0: your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 8 a.m.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Sony Pictures revealed the first look from the upcoming Resident Evil film, helmed by visionary writer and director Zack Cregger, whose last film Weapons was a huge success. The film is set in the universe of the popular survival horror video game of the same name and is set to come out in September this year.
6: City FM 89, we're playing the song.
7: Pura Hafta राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8GB डेटा 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू हैं
8: ना किदार ना इंतजार अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें अपना टिकट बुक करें अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ कभी भी कहीं भी ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका
9: इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू नथिंग फोन 4A और 4A प्रो स्लीक डिजाइन अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस और अब जैज के साथ 5G रेडी अब अवेलेबल है जैज एक्सपीरियंस सेंटर्स पर अफोर्डेबल प्राइस के साथ चाहे फुल पेमेंट करें या इजी पोस्ट पे बाय जैज इंस्टॉलमेंट प्लान चूज करें डिसीजन आपका जैज आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर
10: 89
2: वेयर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
4: नॉन स्टॉप हिट्स
11: नो टॉक जस्ट यू एंड द म्यूजिक
2: बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
3: ना किदार ना इंतजार अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें अपना टिकट बुक करें अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ कभी भी कहीं भी ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका
4: क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो दुनिया भर की मईशत माहौल और इंसानी जिंदगी को मुतासिर कर रही है पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा इस खतरे की पहली सफ में खड़ा है जहां सैलाब ग्लेशियर फटने के वाकयात शदीद गर्मी खुश्कसाली और फजाई आलूदगी जैसे मसाइल तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने माहौलियाती तहफ्फुज़ में एक मिसाल कायम की है बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री जैसे मनसूबों ने सूबे में जंगलात के रकबे में नुमाया इजाफा किया आज सूबे के जंगलात न सिर्फ माहौल को महफूज बना रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के कार्बन अखराज को कम करने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं साफ तवानाई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जदीद फजाई निगरानी और माहौल दोस्त इकदामात एक सरसब्ज और महफूज मुस्तकबिल की तरफ अहम कदम है आए हम भी दरख्त लगाएं आलूदगी कम करें और अपने माहौल के तहफ्फुज में अपना किरदार अदा करें क्योंकि आज का फैसला आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा
5: ये पैगाम महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया
6: You are listening to City FM 89.
7: We are playing your song.
8: Attention. The standard commute has been decommissioned.
9: Introducing a system override for your ears.
10: New energy. New perspective.
11: The same 24 hours, but a completely different vibe.
12: Join ABD as he takes over the streets.
13: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
14: your evenings just got an upgrade.
12: The rush hour with ABD.
15: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
14: Tune in or get left behind.
1: City FM 89. You're listening to
16: Non-Stop Hits.

0: 89. Trading, trust me bro.
1: Nice game.
2: Committee.
3: Lad baraye faro.
2: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
4: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
5: वी आर
6: सिटी एफएम 89।
7: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड।
8: इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ओवरराइड फॉर योर इयर्स।
9: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
8: your evenings just got an upgrade.
10: The rush hour with ABD.
9: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
8: Tune in or get left behind.
11: CFM 89, we're playing the song.
12: You're listening to
13: Non-stop hits.

0: your song.
1: Only on City FM 89. It's 2 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Sony Pictures revealed the first look from the upcoming Resident Evil film, helmed by visionary writer and director Zach Cregger, whose last film Weapons was a huge success. The film is set in the universe of the popular survival horror video game of the same name and is set to come out in September this year.
6: City FM 89.
7: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी Jazz Cash ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए Jazz Cash है ना?
6: City FM 89.
7: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी Jazz Cash ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए Jazz Cash है ना?
3: City FM 89.
1: You're listening to
8: Non-Stop Hits.
9: No talk. Just you and the music.
1: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: फॉलो सिटी एफएम 89 ऑन यूट्यूब टू गेट योर डिजिटल कंटेंट फिक्स, पॉडकास्ट रिव्यूज, इंटरव्यूज एंड सो मच मोर, नॉनस्टॉप कंटेंट फॉर यू।
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: City FM 89, we're playing your song.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: City FM 89.
8: You got me going crazy.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
1: City FM 89.
5: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
4: In intense heat, citizens are advised to take special precautionary measures between 11 a.m. and 4 p.m. Avoid going outdoors unnecessarily. Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K Electric, and Selani Welfare Trust.
5: Trading, trust me, bro.
6: Nice scheme.
7: Committee.
8: Lad baraye faro.
7: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
9: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शरायत ज़वाबित लागू हैं।
10: Have you saved our WhatsApp number yet?
11: 031-428-9899.
10: Get in touch over WhatsApp.
12: City FM 89, we're playing the song.
13: You're listening to
10: Non-Stop Hits.
14: No talk.
15: Just you
14: and the music.
15: Back to back
14: starts now.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: City.
1: When I grow up, I want to be strong.
4: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
1: I want to learn big things.
4: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
1: I want to be the fastest.
4: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
1: I want to grow up like everyone else.
4: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
5: Nurture today, strengthen tomorrow.
4: Act, a Dawn Media Initiative.
3: City 89.
4: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
0: Coming up next.
1: Full disclosure. City FM 89.
5: Trending today.
6: Sony Pictures revealed the first look from the upcoming Resident Evil film, helmed by visionary writer and director Zack Cregger, whose last film Weapons was a huge success. The film is set in the universe of the popular survival horror video game of the same name and is set to come out in September this year.
5: City FM 89.
7: Chickenpox yaad hai. Ye shingles banke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
8: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
9: पीता

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ। एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका।
2: क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो दुनिया भर की मईशत, माहौल और इंसानी जिंदगी को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, इस खतरे की पहली सफ में खड़ा है, जहां सैलाब, ग्लेशियर फटने के वाकयात, शदीद गर्मी, खुश्कसाली और फजाई आलूदगी जैसे मसाइल तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने माहौलियाती तहफ्फुज में एक मिसाल कायम की है। बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री जैसे मंसूबों ने सूबे में जंगलात के रकबे में नुमाया इजाफा किया। आज सूबे के जंगलात न सिर्फ माहौल को महफूज बना रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के कार्बन अखराज को कम करने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साफ तवानाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जदीद फजाई निगरानी और माहौल दोस्त इकदामात एक सरसब्ज और महफूज मुस्तकबिल की तरफ अहम कदम हैं। आएं हम भी दरख्त लगाएं, आलूदगी कम करें और अपने माहौल के तहफ्फुज में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि आज का फैसला आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा।
3: ये पैगाम महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया।
4: सिटी एफएम 89
5: ऑन द डायल, यू आर लिसनिंग टू
6: फुल डिस्क्लोजर विद सबा बानो मलिक।
7: That was Ashanti with Only You. Additionally, if also like me, you live in a tall building, but really it can be any type of building, putting out water for birds, cats, dogs, it's so hot. It's so like by the time a puddle forms, it evaporates so quickly and the animals outside have a pretty tough time of locating water sources. So it's just a nice thing to do. For birds, I like to keep them on my window ledges. You know those like little clay containers like tutis like come in and stuff? I like collect those and I put that out. Or any sort of shallow dish works well for birds. Also, if you're someone running ACs, you know ACs be dripping. You can catch that water and use it to apparently it's great. Also, it's great for your plant. All right, up next, Fat Joe and our second Ashanti.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
1: City 89.
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
7: Kashi jame shiri sab peete
8: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
9: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी
10: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात
9: ये नेचुरल है
11: तो बेहतर है
9: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कशी जामे शीरी
12: ना किदार ना इंतजार अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें अपना टिकट बुक करें अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ कभी भी कहीं भी ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका।

0: on. Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना?
3: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ। एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका।
4: क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुका है। शदीद गर्मी, बेवक्त बारिशें, सैलाब, खुश्कसाली और फजाई आलूदगी इंसानी जिंदगी और माहौल को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, इन मौसमी तब्दीलियों के असरात को शिद्दत से महसूस कर रहा है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद सूबे में बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम जैसे मंसूबों के जरिए जंगलात में इजाफा किया गया, जो माहौल के तहफ्फुज और कार्बन के इखराज को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साफ तवानाई, सोलराइजेशन और माहौल दोस्त इकदामात एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद हैं। आएं ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, पानी और बिजली का ज़िया कम करें और अपने माहौल को साफ रखें, क्योंकि आज का एक मुस्बत कदम कल आने वाली नस्लों के लिए महफूज और सरसब्ज मुस्तकबिल की जमानत बन सकता है।
5: ये पैगाम महकमा इत्तला'आत व ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया।
6: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
7: नई स्कीम,
8: कमिटी,
6: लाड बराए फरो,
9: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
10: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: शराइत ज़वाबित लागू है।
12: You're listening to
13: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
14: That was Ja Rule and Ashanti, Always On Time. Up next, I have been seeing all the videos and clips from his European tour, his Western part of the world tour, Hasan Rahim. He is killing it. It's been so fun to watch, honestly. And like, I'm just seeing like so many content creators I know from like all around the world are going to his shows and like seeing them take pictures together. It's just been really cute to watch. Here he is with Nasheme.

तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।

0: పాకిస్తాన్.
1: గులాబ్ اور سندل کے خالص حرکیات
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
4: Dulux, Dulux, Dulux.
5: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
2: नई स्कीम।
3: कमिटी।
1: लाड बनाए फरो।
3: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
4: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक। इजी वाला बैंक। शरायत ज़वाबित लागू हैं।
5: City FM 89. We're playing your song.
6: You're listening to
7: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
8: Up next, Dochi. Here she is with Denial is a River.
9: Hey, I thought it was...

0: along to your song.
1: Only on City FM 89. It's 7 PM.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
0: Coming up next,
4: Retro 89. City FM 89.
5: Trending today.
6: Sony Pictures revealed the first look from the upcoming Resident Evil film, helmed by visionary writer and director Zach Cregger, whose last film Weapons was a huge success. The film is set in the universe of the popular survival horror video game of the same name and is set to come out in September this year.
1: We are
2: City FM 89.
7: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
8: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी। सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप, 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS, और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री। तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में। जैज, मेरी सुपर पावर। ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: हाथ है उठाना, तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्षी जामी शीली।
3: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात,
2: ये नेचुरल है,
4: अभी तो बेहतर है।
2: लाइट लाइट रिफ्रेशिंग कर्षी जामी शीली।
5: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
6: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में, और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
5: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
7: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89।
8: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
9: यू आर लिसनिंग टू
10: रेट्रो 89 विद आमिर नसीर।

0: Pakistan.
1: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: City FM 89, we're playing the song.
6: Trading, trust me bro.
7: Nice scheme.
8: Committee.
6: Lad barai faro.
8: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो
9: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
10: शरायत ज़वाबित लागू है
11: सिटी एफएम 89 वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
12: यू आर लिसनिंग टू
13: रेट्रो 89 विद आमिर नसीर

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास

0: Pakistan.
1: Light, light, refreshing. Kashi jami shiri.
2: Gulab aur sandal ke khalis harkiyat.
1: Ye natural hai.
3: Jabhi to behtar hai.
1: Light, light, refreshing. Kashi jami shiri.
4: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 PM.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
2: City FM 89. We're playing the song.
5: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
6: City FM 89.
2: We are playing your song.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: Want your song.
1: Only on City FM 89.
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे. अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे. क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
4: City FM 89. We're playing your song.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: The official hashtag on Twitter and Facebook. Hashtag CityFM89. That's hashtag CityFM89.
9: Hold on! Special delivery coming through!
10: Sharing your thoughts with CityFM89 just got a whole lot easier.
11: We're now live on WhatsApp.
12: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
11: It's as easy as 03142-898989.
10: Save our number now and WhatsApp us.
13: CityFM89, we're playing the song.
14: You're listening to
15: Non-Stop Hits.